रखे सतगुरु शब्द विचारी, सिंघी सुरत अनाहद वाजे, घट घट जोत तुम्हारी, प्रपंच बेण तही मन रखिया, ब्रह्म अगन पर जारी, पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योति अपारी, रव सस लौके तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी महया सुने औदू, आलाख अगम अपारी, काया नगरी एह मन राजा, पंच वसें विचारी,

कह बपोरे जीवत मुआ मन मारे। ब्रह्मा बिशन महेश एक मूरत आपे करता कारी। काया सोध तरह भव सागर आत्म तत् विचारी। गुरसेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी। आपे मेरे लय गुणदाता हों मैं तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथे वरतै एहा भगत निरारी।

एहा करनी सारी बेद बाद ना पा खांडे ओदू गुरमुख शब्द बिचारी। गुरमुख जोग कमावे ओदू जात सत शब्द विचारी। शब्द मरे मन मारे औदू जोग जुगत विचारी। माया मोह पव जल है अवदू शब्द तरे कुल तारी। शब्द सूर जोग चारे औदू बाणी भगत विचारी। एह मन माया मोहया अदू निकसै शब्द विचारी। आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। एह मन माया मोहया अदू निकसै शब्द विचारी। आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला पहला। आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरण गगन काल तारी। गुरमुख केती शब्द उधारी संतो। धन वाहिगुरु साहब जी। अमृत बाणी हार हार तेरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो श्री राग महला तीजा। सहजे नो सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए। पाड़ पाड़ पंडित जोत की थके भेखी परम पुलाए। गुर भेटे सहज पाया अपने कृपा करे रजाए।

सुहागणे क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपने, आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया, तने अंतर शब्द वसाया, सहिया से सुहागणे जिन शाह नाल प्यार जियो। जिना भाणे का रस आया, तिन विचों भरम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सबसे लै मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया, दुरमत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो।

सुख सेवाय अंदर रखे हैं, अपने नदर करें निस्तार जियो। सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिए नाम वखाणिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। हाँ सतगुर विटों कुमाया, चिन परम भुला मार्ग पाया, नदर करे जे अपनी आपे ले रलाए जियो। तू सबना माए समाया, तन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जो तरी करतार जियो। आपे खसम निवासिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेव की पैज रखिया, तुय कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे सियाणपां, मेरा प्रभ सब किश जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगन ना बिचारिया, प्रभ अपना बिरद सम

तेरिया भगता भुख साध तेरिया, हर लोचा पूर्ण मेरिया, ते दर सुख दातिया, मैं गल विच लै मिलाए जियो।

जियो। तू वरना चे ना बाहरा, हर दिसे हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ते आयन दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दये सेवड़े, गोर कटी में हंडी जेवड़ी। हाँ बाहड़ छिंज ना नचऊं, नानक यो सरल दा पाल जियो। एक ओंकार सत गुरु प्रसाद, श्री राग महला पहला, पहरे कर पहला। पहले पहरे रहन कै वण जारिया मित्रा, हुक्म पया कर भास। उर्द तापे अंतर करे वण जारिया मित्रा, खसम से ती अरदास। खसम से ती अरदास वखाण, उर्द ध्यान लिव लागा। ना मर जा दे आया कल भीतर, बाहुड़ जासी नांगा।

दूजे पैर रहन के वन जारिया मित्रा विसर गया ध्यान। हाथों हाथ नचाइए वन जारिया मित्रा जो जसदा घर कान। हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेत वचेत मूड मन मेरे अंत नहीं किस तेरा। जेना

तीजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा, तन जुबन स्यों चित, हर का नाम नचित ही बण जारिया मित्रा, बद्दा छुट्टै जित। हर का नाम ना चित प्राणी, बिकल पया संग माया, तन स्यों रत्ता जुबन मत्ता, ऐला जन्म गवाया। तर्व सेती वापार ना कीतो, कर्म ना कीतो मित, कौ नानक तीजे पैरे प्राणी, तन जो बन स्यों चित। चौथे पैरे रहण कै वण जारिया मित्रा, लावी आया खेत, जा जम पकड़ चलाया।

अमड़ियो चाह जम पकड़ चलाया, झूठा रुदन हुआ दुआले, खिन मैं पया पराया। साई

पहले पैरे रहण कै वण जारिया मित्रा, बालक बोध अचेत खीर पीए खेलाइए वण जारिया मित्रा।

तीजे पैरे रैण कै वण जा रिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। चोबन कटै जरू आजणै वण जा रिया मित्रा, याव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंधुले, जा जम पकड़ चलाया। सब किसे अपना कर कर राखिया, खिन मैं पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियाणप, कर अवगण पछताए। को नानक प्राणी तीजे पहरे, प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रैण कै वण जा रिया मित्रा, बिरद पया तनखीण। अखी अंध न दिसई वण जा रिया मित्रा, कन्नी सुने न वैण। अखी अंध जीव रस नाही रे परा को ताना, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुख आवण जाना। खाड़ पक्की कोड़ भजे बिनसे, आए चले क्या मान। कौ नानक प्राणी चौथे पैरे, गुरमुख शब्द पछाण। ओढ़ के आया तन साहया, वन जा रिया मित्रा, जर जर वाणा कन। एक रती गुण ना समाण, आवण जा रिया मित्रा, अवगण खड़सन बन। गुण संजम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना। काल जाल जम जो न साके, पाए भगत पै तरना। पात सेती जावे सहज समावे, सगले दुख मिटावे। कौ नानक प्राणी गुरमुख छूटे, साचे ते पात पावे। श्री राग माला चौथा। पहले पहरे रैण कै वण जा रिया मित्रा, हर पाया उधर मंझार। हर त्यावे हर उचरे वण जा रिया मित्रा, हर हर नाम समार। हर हर नाम जपे आराधे, विच अग्नि हर जप जीवया। बाहर जन्म पया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया। जिसकी वस्त तिस चित्त प्राणी, कर गुरमुख हृदय गुरमुख विचार। कौ नानक प्राणी पहले पैर, हर जपिए कृपा तार। दूजे पैर रैण कै वण जा रिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए। मेरा मेरा करपाली है वण जा रिया मित्रा, ले मात पिता कर लाए। लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने घट खवाए।

हार नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई। एतन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनों कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम संभाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणे, से जाए मिले हर नाल। चौथे पहरे रैण कै वण जा रिया मित्रा, हर चलन वेला आंदी।

बुरा भला न पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा। पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडे जम जंदारा।

तीजे पैरे रैण कै वण जारिया मित्रा बिख संचे अंधे अज्ञान पुत्र कलतर मोह लपटे आवण जारिया मित्रा अंतर लहर लोभान। अंतर लहर लोभान पराने सो प्रभ चेतना आवे साध संगत स्यो संग न किया बोजोनी दुख पावे। सृजन हार विसारिया स्वामी इकने मुख न लगो ध्यान कौ नानक प्राणी तीजे पैरे बिख संचे आंधे अज्ञान। चौथे पैरे रैण के वण जारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम संभाल तू वण जारिया मित्रा तेरा दरगा बेली होए। गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते होए सखाई एह मोह माया तेरे संग न चले झूठी प्रीत लगाई। सगली रैन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानन होए कौ नानक प्राणी चौथे पैर दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का वन जा रिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिलम ना देवनी वन जा रिया मित्रा ओनी तकड़े पाए आत। लिखिया आया पकड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा अस्त गुर सेविया से दरगा सदा सुहेले। कर्म तरती शरीर जोग अंतर जो बोवे सुखात

हार कपड़ो हार शोभा देवो चित सवरे मेरा काजो। हर हर भक्ति काज सुहेला गुर सत गुर दान दिवाया खंड वर पांड हर शोभा होई ए दान नरले रलाया। होर मन मुख दाज जे रख दिखालें सो कूड़ अहंकार कच पाजो।

जुग जुग पीढ़ी चला सतगुरु की, जिन गुर मुख नाम ते आया। हर पुरख न कभी बिन से जावे, निदेवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर को, जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला, पेर मेल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवा, शांति को अंकार। सतगुर प्रसाद मन प्यारिया, जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले।

दर्शन रूप अपार, तीर्थ नाम है अर्चा पूजा अगर वास बहकार, जोगी सुन त्यावण।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच

नानक जंत पाए कै संभाले सबना। जिन करतै करुणा किया चिंता पे करनीता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जुआरी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग।

आसनकार राजा आदल करे गुणकारी काल बिकाल कहे कह बपूरे जीवत मुआ मन मारी ब्रह्मा बिशन महेश एक मूरत आपे करता कारी काया शोध तरै भव सागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सुख पाया

गुरमुख शब्द बिचारी, गुरमुख जोग कमावे और दू जात सत शब्द विचारी। शब्द मरे मन मारे और दू जोग जुगत विचारी। माया मोह पव जल है अवधू शब्द तरह कुल तारी। शब्द सूर जोग चारे अवधू बाणी भगत विचारी। एह मन माया मोहया अवधू निकसै शब्द विचारी। आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। एह मन माया मोहया अवधू निकसै शब्द विचारी।

जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना के नहीं लहिए। सतनाम

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर घर नौ निदयावे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया की जोत। गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दिदार का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुगतियां हठिया जपिया तपिया। जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देग चलाई। तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्मे शीस ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइया चरखिया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुरबानिया कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा संग निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा वाहगुरु ही अकाल पुरख। आपणे पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे माण